कोई जल पानी नहीं पूछा। आ भाई पुरखा आ तार लै सिर ते पंड, एडी पंड जिदे विचों चिकड़ चोरिया सी स्वच्छ सोहने बस्तरां दे पाया होया होते। धन गुरु नानक पातशाह जी ने ओ पंड पाई लैने दे सिर ते रखा दित। उच्चारण करो श्री महाराज। स्वच्छ बस्तर पहने हुए सी किसे होर सेवक दे सिर ते रख देंदे। आ वेखो सारे बस्तर चिकड़ नाल लिबड़ गए हन। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे ए चिकड़ नहीं ए तां केसर है। गुरु घर दी सेवा टोकरी चुकनी चाकरी करनी सेवा करनी ए तां केसर है। जदों घर आए जगत माता सुलखनी ने बेनती कीती स्वामी आए सन बठांदे कोई जल पानी पुछदे। आउंदिया ही एडी वड्डी पंड रखा दित्ती जे सिर ते पाई लैणे दे। ते धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे सुलखनीए ए पंड एहो ही चुक सकदा है क्योंकि इसने सारे संसार दी पंड चुकनी है। उच्चारण करो श्री। दुखां विच जल बद रहा है संसार ए सच नाल जोड़नगे। सुखां दे भाई वाल तां बहुत होंदे हन पर किसे दे दुखां दी पंड अपने सिर ते रख लेनी ते सुखां दियां चोलियां भर देनियां ए भाई लैणे जी दे हिस्से आया। हजूर ने बचन कीता पाई लैने ने सारे संसार दी पंड चुकनी है। प्यारी साथ संगत एक परचा ही सी था स्वच्छ बस्तर पहने होन दूर तो चल के आवे ते फिर आउंदिया नाल चिकड़ दी भरी हुई पनीरी दी पंड सिर ते रख देनी। पाई लैना जी ने सत बचन कीता तन भाग समझे। तो इसलिए हजूर कहंदे हन भाई गुरपीरां की इन्हां चाकरियां नूं इस सेवा नूं कोई समझ सकदा है।

शरीर नू इस जवानी नू बुढ़ेपे ने काबू कर ले, बुढ़ेपे ने जीत ले, हाले भी तू सिमरन नहीं करदा, तेरी उम्र बीतती जा रही है।

सारे सुख देण वाला एक कोई और आम है, कोई और नहीं। ओदा सिमरन कर तेरी गत हो जाएगी।

ना दुख दा दुख, ना जिदे विच लोभ है ना हंकार है। ऐ भाई ओहो इंसान भगवान दी मूरत।

निंदिया की थी तामी कोई परवाह नहीं, जिदे वास्ते सोना ते लोहा एक समान है, पाई ओ इंसान मुक्ति नु प्राप्त समझ।

एक आदमी आया, उत्ते शाल दे गया, ठंड दा वेला सी, कीमती शाल मिलिया पर कोई खुशी नहीं। एक आदमी आया, उत्तो शाल ला के लै गया ते दुख नहीं कीता। एक आदमी आया, प्रसादे दा थाल अगे रखिया, खान लगे ने। एक होर आदमी आया, वो अगों थाल चुक के ते आप खा गया। भोजन आया ठीक है, कोई दूसरा खा गया ता भी ठीक है। एहो जे इंसान जिन्ना दा मन परमेश्वर नाल जुड़े है, दुख सुख इको वर्गे समझते ने, भाई ओही मुक्ति नूं प्राप्त।

अपनी जीव दे नाल उस गोबिंद दे गुण गाओ, कन्ना दे नाल उदा जस सुनो, ते फिर भाई तुसी जमा दे वस नहीं।

सुपने विच कदी बड़ा दुख भोगदा है, बहुत तड़फदा है, ते कदी बड़े सुख भोगदा है। बड़ा दुखी होंदा है कई वरी, ते कई वरी सुखी होंदा है। ते जदू जाग खुलदी ते कहंदा ओ मना, तू ते सुपना देख रहा सी। तो गुरु साहब जी कहंदे ने भाई तू सचमुच सुपना पिया देख दे, तू सुता होया, तू जागना उदों है जदों तेरी मौत होनी है।

हर रोज दिन रात माया वास्ते इंसान भटकता फिरदा है, पर करोड़ां दे विच कोई विरला इंसान है जिहड़ा परमेश्वर दा सिमरन

पानी का पतीला रख दिए, पानी गर्म हो जाए ते अग दे तेज बलन दे नाल पानी उबलदा है ते बुलबुले उठदे ने पानी दे। गुरु साहब जी कहंदे ने भाई जिस तरह ओ बुलबुले उठदे ने पानी दे ते खत्म हो जांदे ने, इस तरह ही इस संसार की रचना भी इस तरह की।

मन ते माया विच फसाए ते गोबिंद दा नाम उन विसार छड़े परनाम तू बगैर जी।

दुखी हो गए ते सारिया ने साथ छड़ दिता, पर याद रख सारे साथ साथ छड़ जांदे नहीं, पर एक परमेश्वर जिहड़ा है वो हमेशा सहाई रहिंदा।

बचपन जवानी बुढ़ेपा तेन अवस्था समझे के भजन तू बगैर तीनों अवस्था एवं गवा ली भजन तू बगैर बिरथिया ने।

झूठे मान क्यों कर दे जगत नु सुपने दी तरह समझ कुछ भी तेरा नहीं गुरु नानक ए गल सच्ची कहंदे करदा मालिक सारी उम्र तिया पुत्रां दी पालना करदे पाप करके कमाई करदे दिन रात भजो फिरदे माया वास्ते जदू मरदे वेड़े विच पिया हुंदे फट्टे ते पांदे ने जिन्ना तिया पुत्रां दी पालना कीती फिर ओही कहंदे ने एदियां जेबां फोड़ लो घर दियां चाबियां तां नहीं जेब विच किधरे माया वाला बटुआ तां नहीं पाया जे पाया है तां कढ लिया हाथ देख लो कोई सोने दी अंगूठी तां नहीं पाई कड़ी तां नहीं पाई जे पाई तो वो भी ला ली जिस चंगा सूट पाया है तां वो भी ला लैंदे ने घर दा मालिक एक कफन पा के ओही तियां पुत्र लैके तुर पैंदे ने शमशान घाट लै गए जे कफन चंगा है ते कई वारी साड़न वाला ओ भी ला लैंदा है माड़ा जा कफन रह गया ते फिर अग कहंदी भाई आया ते नंगा सी ये कफन किथे लै चले ओ कफन अग साम लैंदी शरीर भी नाल नहीं जांदा ते गुरु साहब जी कहंदे ने भाई तू जिन्ना वास्ते पाप करदा है किसे ने भी तेरा साथ नहीं देना ओना ने तेनु नंगा करके घरों बाहर कढ़ना है क्यों झूठे मान करदा है कोई भी तेरा नहीं।

सारा जगत झूठा है। रचना सब विनसन वाली है, जिस तरह रेत दी कंध खड़ी नहीं रह सकती, इसी तरह इस संसार

बंधन पै गए, कुछ भी उपाय नहीं हो रहा। ऐ परमेश्वर हुण तेरा ही आसरा है, मेरी रखिया कर, जिवें तंदुए तू गज हाथी दी तू रखिया।

धन पदार्थ ने किसी ने भी तेरा साथ नहीं देना। एक परमेश्वर का सिमरन है जिन्हें तेरी सहायता करनी ता पाई उस गोबिंद दे गुण गा ताकि तेरा जिहड़ा जन्म

भाई साहब, भाई गुरदास जी, अकाल पुरख वाहेगुरु अगे अरदास कर रहे हैं। हे वाहेगुरु, हाँ अपराधी गुनाहगार। कोई भाई गुरदास जी अपराधी नहीं सन, पापी नहीं सन, क्योंकि जिसने सच दे मार्ग ते चलना है उसनू निम्रता धारण करनी पड़ेगी। जे किसी जपा तपा दा मन विच हंकार आ जावे तां ओ जप तप कीते हुए निष्फल हो जांदे हन। इसलिए जिसने इस मार्ग ते कदम रखिया उसने सब तों पहला निम्रता धारण कीती है। भाई साहब श्वास श्वास बंदगी करदे सन, श्वास श्वास जपदे सन, ते फिर सारा जीवन उन्होंने गुरु चरणा विच रह के अनेकां जीवां नूं गुरु नानक दे दर नाल जोड़िया है। एडी मान महान हस्ती होंदिया होया भी भाई साहब कहिंदे न हों अपराधी। आ जो तुसी शब्द सरवण कर रहे हो, गल्ली असी चंगी हां, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दा ए शब्द है। गुरु नानक सच्चे पातशाह भी अकाल पुरख वाहेगुरु अगे ए अरदास कर रहे हैं, हे वाहेगुरु गल्ली असी चंगी हां। असी गल्लां करके तो बड़े चंगे बनन दा जतन करदे हां, पर ऐसे हां नहीं हे वाहेगुरु। असी अपने आप नूं बहुत कुछ समझते हाँ, पर ओ गल साडे विच है नहीं। गल्ली असी चंगियां, गल्लां असी बड़ियां ज्ञान दियां करदे हां, पर आचारी बुरियां। असल विच असी माड़े पासे जा रहे हैं। मनो कसुद्धां कालियां, मन माड़े पासे दौड़दा है, ते गल्लां असी चिते हुण दियां करदे हां। हे वाहेगुरु तेरी बख्शिशी सानू तार सकदी है, तेरी रहमती तार सकदी है। और भाई साहब गुरदास जी कहंदे ने मैं तां रोम रोम गुनाहगार हां। हे वाहेगुरु हों अपराधी गुनाहगार, हों बेमुख मंदा, चोर यार जुआर हूं पर घर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर। भाई साहब गुरदास जी सिख पंथ की महान हस्ती हुए हैं। आप जिथे गुरु अर्जन देव पातशाह ने कलयुगी जीवां नूं तारन हित गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की रचना की, उसके लिखारी हैं भाई साहब भाई गुरदास जी। सिख पंथ के वेद व्यास होंदे हुए भी आप कहिंदे ने हों अपराधी। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। एक वेरा दा जिक्र है, भाई साहब गुरदास जी जा रहे हैं ते पिछे बहुत संगत जा रही है। किसे ने वेखिया भाई ये किड्डी महान हस्ती होवेगी जिदे मगर इतनिया संगतां जा रही हैं, तां पुछन लगा भाई ये कौन साहब हैं। भाई साहब गुरदास जी ने एक गल सुन ली ते आप उस प्रेमी दे पास आ गए जिसने पुछया सी भाई ये कौन साहब हैं। भाई साहब कहन लगे भाई जे कुछ मेरे बारे पूछ रहा है ता इना नू ना पूछ, मैनू पूछ, क्योंकि इना ने मैनू बाहर मुखी वेख्या है ते मैं अपने अंदरले नू भी जानदा हां जो कुछ मैं हां। असी भी अपना परिचय कराउंदे हां ना, कोई पूछे भाई तुहाडी क्या तारीफ है ते किड्डे चंगे चंगे शब्द लभ के अपने लई वरतदे हां। और भाई साहब नूं जदों पुछया गया तां भाई साहब कहिंदे ने भाई इन्हां कोलों ना पुछ, जे मेरे बारे कुछ पुछना है तां मैनूं पुछ, क्योंकि इन्हां ने मैनूं बाहर मुखी वेख्या, मैं अपने अंदरले नूं भी जानदा हां। आख्या जी तुसी दस दिओ, तां भाई साहब कहण लगे हों अपराधी गुनाहगार, हों बेमुख मंदा, चोर यार जुआर हूं पर घर जो हंदा,
ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਠੱਗ ਦੇਸ ਠਗੰਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਸ ਘਾਤੀ ਅਕਿਰਤ ਗਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਰਖੰਦਾ ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀ ਔਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਉਹ ਐਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਛ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਛ ਗਿਆ, ਆਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਹਨ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ।

तेनू मनुष्या देही प्राप्त हुई। गुरु कलगी तर पातशाह ने बख्शिश की थी। जेड़ा खाका गुरु नानक ने चितरिया, जिस खाके दे विच गुरु अंगद देव पातशाह ने भी रंग भरिया, गुरु अमरदास पातशाह ने भी सेवा का रंग भरिया, गुरु अर्जन देव पातशाह ने भी शहादत का रंग भरिया।

उस गुरु की बख्शिश हासिल कर, रहनी बहनी विच रह, पंजा कक्कियां दा धारनी बन, सुंदर दस्तार सजा। जे सिख हो के टोपी पाउंदा ता फिर इत्थे बख्शिश, सिख होए सिर टोपी धरै, सात जन्म कुश्ती होए मरे, सात जन्म कोड़ी दा मिलदा जे सिख होके भी टोपी पावे। सिख दा फर्ज अपने धर्म च रहना, हिंदू है वो अपने धर्म च रहे, गल विच जनेऊ पावे, मुसलमान है अपने धर्म च रहे, पर सिख दा धर्म पंजा कक्कियां दा धारनी बन जाना। ते गुरु दी बख्शी सुंदर दस्तार नूं सजावे, सिखी स्वरूप पूर्ण धारण कर लवे। अज दा मुसलमान कहिंदा मैं सिख बन जावा, दास आ थोड़े दिन होए कुवैत दी धरती ते जदों गए, कुछ दिन कीर्तन कीता, एक मुसलमान जिदे हिरदे विच भावना प्यार बड़ा, गुरु दे दर ते आउंदा है, सेवा करदा, सिमरन करदा, कीर्तन सुनदा, निता परत नियम है, पर जदों दास वापस आउण लगे ते उस दे नेत्रां विचों जल वहण लग पिया, हथ जोड़े भाई साहब जी आप जा रहे हो, मेरे वास्ते एक अरदास कर जाओ। मैं उस मुसलमान वीर वल तकिया, ख्याल आया अज दा मनुख दुखी है, हो सकदा है इसनूं भी कोई दुख होवे, इस वास्ते चाहुंदा कि गुरु दे चरणां विच अरदास कर जावे। पुछिया भलिया की दुख है, किस वास्ते कहिंदे अरदास करो, हथ जोड़े भाई साहब मैनूं कोई दुख नहीं, मेरी एक इच्छा है कि मैं सिख सज जावां। भाई साहब आ तीन वार मैं केस रखे पर मैं सिख ना बन सकिया, मेरे केस कतल कर दिते गए क्योंकि मैं मुसलमान हां, कुवैत दी धरती ते रहिंदा, पर इस वास्ते भाई साहब मैं तुहाडे चरणां विच इक अरदास करदा कि गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे चरणां विच अरदास करो कि आ जन्म तो बाद मेरा अगला जन्म सिखां दे घर होवे ते मैं सिख बन के गुरु कलगीधर पातशाह दा अमृत छक के पंजा कक्कियां दा धारनी बन के ते सिख हो जावां, फिर मेरा लोक सुखी परलोक सुहेला हो जावेगा। मेरा दिल करदा है कि एक बार अमृत छक लव। एक मुसलमान वीर की भावना है सिख बनन दी, अमृत छकन दी, ते अज दा सिख कदे झात मारीए, अज दा सिख नाइयां दी दुकानां ते बैठा है, वह चाहुंदा है कि मैं केस कतल करा लव, केसां दी विध भी करदा है। अज तकीए मेरियां भैणां भी केसां दी बेदबी भी कर दियां। मैं उन्हां भैणां नूं भी बेनती करा, उन्हां वीरां नूं भी बेनती करा, आओ भाई जे तुहानूं सिखां दे घर जन्म मिलिया ते इस विरसे नूं संभाल लईए, आओ भाई पूर्ण हो जाइए। जदों पूर्ण हो जावांगे, दस्तार सजावांगे, गुरु दी सिखी जो गुरु ने बख्शी है इस नूं गहना मन के हंडावांगे, ते फिर गुरु बख्शिश करेगा, झोलियां भर देवेगा। आओ फिर अपने मन नूं समझा लईए, ए मंजल दूर बथेरी जो मिलदी ना हर वेरी, हर वारी ता ए मनुष्या जन्म नहीं प्राप्त होना, तेनूं ए दात प्राप्त होईए ते हुण रहितां विच रह, बख्शिश हासिल कर, इस सिखी नूं गहना मन के हंडा। अज जिवें बीबियां गहना पाउंदियां किस वास्ते, अपने शरीर नूं सिंगार दियां अपने पति नूं खुश करन वास्ते, ते आवे सिखा तेरा भी पति ओ परमात्मा, तू भी उन्हूं खुश कर, अपने शरीर ते आ गहना
ਪੰਜਾਂ ਕੱਕਿਆਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ।

अपनी शान पिछर लख बोलिया हे प्रभु मैं ना मरा। चुप गल हो गई, तू कह दिता मैं ना मरा, मैं प्रधान होगी जो सतनाम शील तेरी मंग दे विच मैं प्रधान होगी।

तू आप ही मौत के कारण दसन लग पे अपनी सियाणप के नाल। तेनू पता नहीं सी के परमात्मा बेअंत गुणा का मालिक है, जेड़े तू मौत के कारण दस रहा परमात्मा के पास होर भी कोई कारण हो सकता जेड़ा तेनू चेते ना हो सतनाम श्री वाले होर भी कोई कारण हो सकता। जे चंगा हुंदा हर नाकश कहंदा हे प्रभु मैनू जीवन की जुगत दे दे, हे प्रभु तू मैनू जीवन की जुगत दे दे, ओ जीवन तो मिलया नहीं ते फिर मौत का कादा डर सी तेनू जब सतनाम श्री वाहिगुरु जीवन लैंदा। जे तू कह देना मैनू जीवन दे ता फिर परमात्मा प्रदान हुंदा तेरी मैं प्रदान ना हुंदी। जदो नाम तो कोई दूर चला जाए रावण वर्गा विद्वान भी मूर्ख बन गया जो सतनाम श्री वाहिगुरु क्योंकि नाम तो दूर चला गया। सत संतोख विचार उदो ही है जे नाम का आधार है।

अगला सवाल कि ए भोजन नाम रस वाला किवें छकिया जांदा है, किवें पीता जांदा है। हुण भोजन भी मिल गया, पता भी चल गया भोजन किथे है, ए भी समझ आ गई भोजन बड़ा श्रेष्ठ, पर छकिया किवें जांदा है, किवें पीता जांदा है, उहदी जुगत दसदे ने।

कोई रसना खाली ना रहे। पहला दास बोलेगा, दूसरी बार मेरे वीर, तीसरी बार मेरी भैन। दो ही पंक्तियां बोल के समाप्ति।

अगली जो पंक्ति है ना बहुत जरूरी है। एक गुरसिख के कर्तव्य लई है, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजय व्रत घोर मड़ी मट भूल न माने। आओ सारे पढ़िए जी।

जो हरी जश विच हरी दी कथा वार्ता विच वाहिगुरु दी याद विच गुजरदा है ओही लाभदायक है। ओही तेरे अंग संग होके तेरी सहायता करेगा। बाकी दा समा लेखे विच नहीं, क्योंकि गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरारथ दाम। जिस तरह किरपन मनुख सारी उम्र धन जोड़ जोड़ के मर जांदा है, उसका सुख नहीं मान सकता, इसे तरह ही अमोलक श्वासा रूपी धन जो मनुख नू मिले, जे भाई जपया नहीं, सिमरन नहीं कीता, सेवा नहीं कीती, हजूर कहिंदियां ने गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, तेरा संसार ते आया निष्फल हो जाएगा। इसलिए जितना भी समा सिमरन विच जप तप विच बतीत होंदा है, समा ओ सफल है

साहिबानी उस वक्त ए शब्द उचारे काल नाही जोग नाही नाही सत का डब थान सट जग भ्रिष्ट होए डूबता इव जग कोई जोग नहीं कोई ज्ञान नहीं कोई सच नहीं इस करके ए सारी दुनिया भ्रिष्ट हुंदी जा रही है ए सारा संसार डूबता जा रहा है कल मैं राम नाम सार ए भाई पखंड छड दियो कलयुग दे विच सिर्फ उस परमेश्वर दे नाम ने सहाय

साहब जी कहन लगे भाई दुनिया नू कहना है कि मैनू तिन्ना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना है अखी ता मीटे नाक पकड़े अखा बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना है ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण वास्ते जद के तेनु ए पता नहीं तेरी संदूकड़ी किथे है ते गुरु साहब ने कहा जो अपनी बाणी विच बयान कीता है साहब जी उस जोगी राज नु की समझांदे ने।

पाछे कछु ना सूझे। तेनु अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई हुई है। पिछा देखे इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गए ते गुरु साहब ने कहा, भाई दुनिया नु क्यों धोखा तो देना है, अपने पिछे पई तेनु संदूकड़ी दा पता नहीं ते दुनिया नु कहना है।

भगत कबीर सावदा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया, तीन कुटिया बनिया सन। उन्हां कुटिया दे कोल गया, एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण ए बड़ा खुश होया, क्योंकि नारायण परमेश्वर नूं कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई, दामोदर। दामोदर भी भगवान का एक नाम है। तीसरी कुटिया विचों आवाज आई, बिंद्रावन। ते बिंद्रावन कृष्ण भगवान जिस जगह खेडे, ए सेठ बड़ा खुश होया। उन्हां तिन्हां कुटियां दे विचों एक एक साधु बाहर निकले, जिन्हां चिट्टियां धोतियां बन्नियां ने, गलां विच माला, हाथ विच माला, ते एक हाथ विच चिट्टा लिशकदा होया लोटा फड़े। ए तुरदे तुरदे इस सेठ दे कोल आए ने। इस सेठ नूं गली बाती जंगल विच लै गए ने। उत्थे जाके इन्हां तिन्हां साधुआं ने जो कुछ सेठ दे कोल सी ओह खोलिया। इस सेठ नूं जानू मारन लगे ने, पर किसी तरह ए सेठ अपनी जान बचा के जंगल विचों भज निकलिया ते कबीर साहब दे घर चला गया। एदे पाटे कपड़े देखे ते कबीर साहब कहन लगे, भाई की गल है, तेरा बहुत बुरा हाल है, तेरे कपड़े पाटे नहीं। कहन लगा कबीर साहब, मैनू तीन साधुआं ने लुट लिया, मैं तो संत समझे, पर उन्होंने मेरी सारी माया खो ली, मैनू जानू मार देन लगे सन, पर बड़ी मुश्किल अपनी जान बचा के मैं उथों भजे। ते कबीर साहब कहन लगे, भाई वह संत नहीं, पता है वह कौन ने? कबीर साहब जी अपनी बाणी विच उन्हां बारे बयान कर

गली जिना जप मालिया जिना ने गला विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी बग ते हथां दे विच चिटे चमकदे होए लोटे फड़े होए ने।

के भांडे जेड़े ने चंगी तरह मांज मांज के चुल्ले ते रखदे ने। काठी कहंदे ने लकड़ा नूं, जेड़ियां लकड़ां जंगल विचों लियांदे ने, उन्हां लकड़ां नूं गंगा दे पानी नाल धो के फिर सका के बालदे ने। सुचता इन्नी रखदे ने

बसुधा खोद करे तोय चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने, लकड़ा भी धो के बालदे ने, पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा जाणा।

अभिमान दे भरे हुए ए आप ते डुबदे ने सगल कुटुंब डुबावे अपना सारा कुटुंब अपना सारा खानदान ए डूब लेंदे ने।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई धनी आदमी आया, गंगा दे पार जाना सी, बेड़ी दूसरे पासे सी, इस वास्ते इस पेकी संत दे कोल ए धनी आदमी बैठ गया। गल्लां बातां करदा रहा, बेड़ी आई, ओ तनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेखी संत ने अपना आसन चुकया, ओ माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी दूर

दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेखी संत नु पुछिया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वांस

समझ लिया कि मेनू थैली लुकांदे आ, नामदेव ने देख लिया। पेखी संत कहन लगा, सेठ जी ओ जिहड़ा नामदेव सामने बैठा सदा पिया है, तुहाडी वासली ओहदे कोल है। सेठ उठिया ते भगत नामदेव दे गल पै गया, कहन लगा मेरी थैली दे। होर भी दो चार आदमी इकट्ठे हो गए ते सारे भगत नामदेव नूं कुटण लग पए। ओह जिहड़ा पेखी संत सी अपना वड्डापण दसण वास्ते अपने आसन तों उठिया, उन्हां लोकां नूं कहण लगा नामदेव नूं मारो ना, जे इन्हें माया वाली थैली चुकी है ते आपे परमेश्वर इनू सजा देवेगा। इन्हें इन्नी गल कही, उधर एक हवा दा बुला आया, उस पेखी संत दा आसन उड़िया ते थलों माया वाली वांसली नजर आ गई। उस सेठ ने ते लोकां ने नामदेव नूं छड़ दिता ते उस पेखी संत नूं फड़ के कुटन लग पे।

पर कैरी अख करके देखता रहा कि केड़ी मच्छी मेरे ज्यादा कोल है। ओ ते मथा टेक दिए ने संत समझ के, ते ओदू ही पता लगता है जदू बगला मच्छी नू मुंह विच पा के ते उड़न दी करदा है। भगत जी कहंदे नी ए संत भी ओहो जे ने उस बगले दी तरह के जदू दा लगदा है इंसान नू लुट पुट के खा जांदे।

ए पाई काहे को कीजे ध्यान जपना जे तुहाडा मन नहीं जुड़दा ते क्यों समाधियां ला ला के बैंदे हो।

तितर दा रंग बड़ा सोहना हुंदा है। सिंह च भोजन जो नर जाने, भगत नामदेव जी कहंदे ने कि जेड़े लोग जेड़े इंसान तितर दे बारे जानदे ने कि रंग बड़ा सोहना पर खांदा की ए कीड़े ते मकौड़े, ऐसे ही ठग दियो बखाने। इसी तरह इन्हां संतां नूं समझो जिन्हां ने चिट्टे चिट्टे ते लम्मे लम्मे चोले बनाए, हत्थां विच माला फड़ी ते कहंदे ने असीं घर बार छड्डे आ, असीं त्यागी, पर इन्हां संतां नूं उस तित्तर दी तरह समझो जिहड़ा सोहना ते बड़ा है पर खांदा कीड़े मकौड़े। इसे तरह ए संत चोले तो लम्मे लम्मे पाए ने चिट्टे रंग दे, पर अंदरों ए ठग ने उस तित्तर दी तरह

0: अच्छा हो ऐसी
1: मैंने अच्छे का विचार पाप वृता ऐसी
0: तन कर मत की मन माहे।